0: Please welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
1: पंजाबी मेरी जान वर्गी पंजाबी मेरी पहचान वर्गी पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी पंजाबी निरे खुदा वर्गी पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी पंजाबी कोरे जवाब वर्गी पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी पंजाबी सजना दे नाम वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी सुनते रहना प्रोग्राम नचता पंजाब हर मंगलवार की शाम 3:15 तो लेके 4:45 तक बने रहो नचता पंजाब की टीम अमरीक जी तेरी

ध्यान दीजिएगा आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saivachanamrit ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है।